मेला उसके बाद झमेला, बाबूजी बेचारे कुली बीवी बच्चे ठेला, अरे ठेला अरे ठेला अरे ठेला। शादी एक बरस का मेला उसके बाद झमेला, बाबूजी बेचारे कुली बीवी बच्चे ठेला, अरे शादी शादी।

0: होठों पे सच्चाई रहती है,
1: जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
2: होठों पे सच्चाई रहती है।
3: मुकेश, जो आप सबके प्रिय गायक थे, मेरे बड़े भैया थे। मुकेश भैया एक महान कलाकार थे, एक महान आत्मा थे और बहुत प्यारे भैया थे। कोई है जो उनकी याद में बेचैन नहीं? जब जब पुरानी बातें याद आती हैं तो आंखें भर आती हैं। उनके दिल से निकली हुई इस पुकार को भला कौन

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो

गुड गाना धमक का गाना, ये है आपका उजाला रेडियो। मैं हूँ अमित जयराम, इट इज मेरा और आपका साथ। ये लगे फील गुड गाना, न्यू बॉलीवुड सॉन्ग्स, तुझे दो रोको बेचे लव गाना, दू डॉट बाय द वन एंड ओनली दुनिया का मशहूर हिंदुस्तानी सुपर रेडियो, दुनिया का मशहूर हिंदुस्तानी हिट रेडियो, उजाला रेडियो, तू जाने है तो।

तू फीवर मुझ पे चर गया है, सानू बीमार कर गया है। इस स्टेम फ्रॉम एश किंग जुटिका तंगरी एंड स्टेम फ्रॉम अभिषेक हेल का गाना में तो हेल का अरबी से ट्विस्ट और गाना का नाम रहा या हबीबी। यू हर्ड देम हियर बाय द वन एंड ओनली उजाला रेडियो। जहां भी हो आप वाचो का ना दूं बिंद एक सांस से खनीत लेकर सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल गाना uit het jaar 2020, de stem van Mohit Chauhan. Filmke naam he Guns of Banaras. Organeke naam he Dhire Dhire Se.

मच्छरदानी नतानू बेबी, गर्मी लागी रे। फिल्म का नाम है जबरिया जोरी। विदिन द होस्ट रोल सिद्धार्थ मल्होत्रा सम विद परिणीति चोपड़ा। En releasejaar van deze film was het jaar 2019. Heerlijke actie-comedy-movie. Hoor je film Aja Nachale uit het jaar 2007.

0: You Are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: अरे मेरे मोहब्बत के प्रोफेसर, अगर इतना ही पसंद आ गया था तो एक अदद प्यार का सबक उसे भी पढ़ा दिया होता।
2: माफ करो बाबा, हम वो प्रोफेसर हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अपनी किस्मत तो देखो, ऐसा कुड़ शागिर्द मिला है कि जिंदगी पढ़ाते पढ़ाते गुजर जाएगी, लेकिन तुम्हें प्यार करना नहीं आएगा।
1: नहीं आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा?

में संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

यू आर उजाला रेडियो, ये है सुनो लो। और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम ये नामा आपको सुनाने को जा रहे हैं। कभी कभी तू लोग सोचे तू मांगे है के तू मांगे है के तू मांगे है। सोम्स हम लोग कोनो के मांगिला, कोनो के हम लोग मांगिला, बाकी ना मिले तो

मैंने तुझे मांगा है, तुझे पाया है नया। जिंदगी में कभी कभी ऐसे चीजवा हो है कि तू कौन के मंगे, बाकी बहुत मूर्ति करिए, चाहे जितना मूर्ति करिए ना मिले हैगा। एंड कभी कभी हम लोग अमन रलाची में बोला कि ए मेरे राजा, ओ मेरे

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

रोज मैं टर्प कर। अभी आपने सुने हैं किशोर कुमार की आवाज में एंड फिल्म का नाम है बेमिसाल। इस फिल्म में काम के है अमिताभ बच्चन। यू आर उजाला रेडियो के जरिए हम ला रहे हेडलाइंस एंड दान अपराधों में आनंद चंद्रिका सिंह। वीकेंड के बारे में समाचार या आने वाले दिनों के बारे में समाचार या आज के समाचार मुख्य समाचार क्या है। वेलकम अलमाल मैं उजाला कॉफी चाय मीडिया शो। आज सोमवार 5 तारीख अक्टूबर का प्रोग्राम जो हम आपके लिए पेश करें हैं एंड न्यूज तो ढेर रहेगा और 5 तारीख अक्टूबर हो ही गएगा। वक्त खा देता है तो स्नेल है। एक बाद में 2 महीना और बाकी रहेगा तो साल 2026 खत्म हो जाएगा। Headlines van vandaag. Nederlandse studieschuld daalt voor het eerst. Bij begin 2026 stond er in totaal 28 miljard euro aan studieschuld open. 800 miljoen minder dan een jaar eerder. Ook het aantal mensen met studieschuld daalde met ongeveer 60.000 naar ruim 1,5 miljoen. Wel hebben we nog zo'n 145.000 mensen meer dan 50.000 euro schuld. Maar bala sotje toch? Die studieschuld. 28 miljard euro. Nieuwbouw op verkopen daalt voor 4e kwartaal op rij. In het 2e kwartaal werd ongeveer 5700 nieuwbouwwoningen verkocht. Ruim 11% minder dan een jaar eerder. Tegelijkertijd steeg de verkoop van bestaande woningen juist bijna 3%. Een nieuwbouwwoning kostte gemiddeld 514.000 euro. Nou, voor de starters wordt het steeds moeilijker, hè? जो शुरू शुरू में अभी कभी ना घर के रिम की नस्बा फॉर द यंग मेन से या 514.000 Meer dan 1100 Nederlandse bushalters verdwenen. Nederland telt nu 39.525 actieve bushalters. Nou ja, bijna 3% minder dan in 2020. Vooral Groningen en Drenthe verloren veel haltes. Deskundigen waarschuwen dat openbaar vervoer daardoor in landelijke gebieden minder toegankelijk wordt. Nou, dat moeten we niet hebben, hè?

0: उजालास सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया।
1: पुरानी यादों के साथ और सुरीले गीतों के संग बनता है उजाला रेडियो का कार्यक्रम।

Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november. Koop je kaarten via meervaart.nl. Ujala Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर उन्होंने बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेयर इंफॉर्मेशन ऑफ उजाला पिंडनेल उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

नम्र संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

0: पहुंचाना सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया।
1: ये उजाला रेडियो है।

आम्स्टर्डम के रहने वाले समस्त परिवार जद्दू बहादुर के साथ ये सूचना को करे हैं कि बीते शनिचर 3 अक्टूबर को जातदग 3 अक्टूबर को 67 साल के आयु में लेफ्टाइट फॉर्म 67 यार आम्स्टर्डम के रहने वाले बेटा विनोद और बेटा जिसवन जद्दू और बेटी अंशला जद्दू की माँ माइकल और आशना की सास शायरा और सलीना की ओमा आम्स्टर्डम स्खलक बर्गस्ट्रात के रहने वाली विधवा कार्लावती रामदीन जद्दू का देहांत हो गए हैं, जो कि विधवा थे देवेंद्र जद्दू का और जिन लोग ज्यादा कार्ला के नाम से जानते थे। आम्स्टर्डम के रहने वाले समस्त परिवार जद्दू बहादुर के साथ ये सूचना को करे हैं कि बीते शनिचर 3 अक्टूबर को जातदग 3 अक्टूबर को 67 साल की आयु में इन लेफ्टाइट फॉर्म 67 यार आम्स्टर्डम में बेटा विनोद बेटा जिसवन और बेटी अंशला जद्दू की माँ माइकल और आशना की सास शायरा और सलीना के ओमा आम्स्टर्डम स्खलक बर्गस्ट्रात के रहने वाली विधवा कालावती रामदीन जद्दू का देहांत हो गए हैं, जो विधवा थे स्वर्गीय देवेंद्र जद्दू का। सूरीनाम देश में इंदिरा गांधी वह के रहने वाली थे। अर्थी से आखिरी मौका है विदा लेने के लिए मंगलवार दिन 6 अक्टूबर के रात को 7 से लेकर 8 बजे तक फनफ सावंस 7 tot 8 uur वेस्टगाड़ ओक मेरवेग 275 आम्स्टर्डम में। Daar kria ki okia jaiga, boudoir, aanstaande woensdag is de crematie. Sjaam met 10 bezig vanaf 3 uur, Westgaarde crematorium, ook meer weg, Doosopetjetter, Amsterdam mee. Jan Karkele, Tarken Merdige, 06-22-65-53-41. 06-22-65-53-41. Soms periwaar, Jan Pahjansi, Nividen hem, is gewerko oud door Takpahotjad in de claim. Ujala Radio, soms periwaar, Jaduke, doeg mee, Shamil hem.

और तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो लोगों से अब क्या वास्ता। प्रीतमन नीरज श्रीधर से आप सुने उजाला रेडियो पर।

अरे मेरी जान कुछ भी कीजिए पर दिल हमी को दीजिए। और आप सुने लता मंगेशकर और मुकेश जी से फिल्म छलिया का गीत उजाला रेडियो पर।

अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, लता जी की आवाज में गीत आप सुने और फिल्म का नाम अभिमान।

तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में आप सुने, और फिल्म का नाम अप्रैल फूल।

0: ठुमक ठुमक मत चलो, आज मत चलो, किसी का दिल तड़पेगा। हो मुकेश जी की आवाज, फिल्म का नाम कहीं प्यार ना हो जाए।
1: चलो आज मत चलो।
2: यू आर, दिस इज डेनिस मोय फ्रॉम द ANWB। Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे। और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

ये उजाला रेडियो है। अब यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम सबरंग आगाज करते हैं। हर एक सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं हूँ आपका हमसफर निशा। गाने जो हमने आज सुनवाएंगे इसमें ज़रूर आपकी पसंद भी होगी। आप नहीं होते तो स्वरों की महफिल कैसे सजते। तो आइए शुरू करती हूँ प्रोग्राम सबरंग से। किसी भी शख्स का दूसरा चेहरा तलाश करने की कोशिश ना करो। तुम्हारे लिए यही काफ़ी है कि उसने तुम्हारा एहतराम किया और अपना बेहतर चेहरा तुम्हारे सामने पेश किया। शुरू करते हैं ये बयान से, तर्ज है अल्लाह की नेक बंदे नेकी का बीज बोले।

अल्लाह के नेक बंदे मोहम्मद रफी साहब से पेश था ये बयान। अब आइए सुरदास भजन सुनवाते हैं, हेमंत शुक्ला जी की आवाज में। तर्स है अखिया हरी दर्शन की प्यासी,

अखिया हरि दर्शन की प्यासी, गायिका हेमंत शुक्ला की आवाज में पेश था सुरदास भजन। प्रोग्राम की शुरुआत में हमने आपको मजहबी और भक्ति संगीत सुनवाए। अब हम आपके खिदमत में गजलें पेश करेंगे, उम्मीद है आप इसे लुत्फ उठाएंगे। अंधेरी रात में उम्मीद का उजाला लाई हूँ, वो अपने साथ मोहब्बत का एक प्याला लाए है। बुझा हुआ था जो मुद्दत से दिल का अंदर मेरा, वो चिराग़े इश्क से जलाने आई है।

शायराना अंदाज में पेश थी ये गजल, कलाम फैज रतनामी का, आवाज़ थी श्री जगजीत सिंह की और ख़ुद उन्हीं की मौसिकी थी। सबके दिल में रहता हूँ, सबके दिल में रहता हूँ, ये हुनर भी खूब है, पर मेरी तन्हाई का आलम भी तो महबूब है। यूं तो हंसते खेलते गुजरती है जिंदगी, पर तेरे बिना मेरे दिल का आंगन खाली है।

शहनशाह गजल नवाज उस्ताद मेहदी हसन से पेश थी ये गजल। तेरे नजर का जादू, तेरे नजर का जादू रूह में समा गया। तेरे पास आते ही मेरा हर खौफ मिट जाता है। मिट जाते हैं फासले जब नजरें मिलती है। तू मिल गया तो जीने का एहसास अब हुआ है।

रूहानियत अंदाज में पेश थी ये गज़ल अलका याग्निक की आवाज़ थी, मौसिकी अनु मल्लिक की, कलाम शायर जावेद अख्तर का था। दुख सुख था एक सबका, चाहे अपना हो या बेगाना, हमें तो बस हर दिल में मोहब्बत का दीप जलाना है।

जी हाँ, वो भी था एक जमाना। पंकज उधास की आवाज में पेश था ये गाना और महान शायर जफर गोरखपुरी का कलाम था। महफिल की रौनकें थी, महफिल की रौनकें थी, जिनके दम से वो अपना रुख बदल कर चले गए। हमें अंधेरों के हवाले करके वो शमा बुझा कर चले गए।

अनमोल गीत पेश था लता जी की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण का लिखा तर्स था और हुस्नलाल भगत राम का सजाया संगीत। अगला दो गाना पेश है, गाने वाले हैं मोहम्मद रफी साहब और गीता दत्त जी।

सदाबहार गाना पेश था, संगीत देने वाले थे शंकर जयकिशन, बोल था शायर शैलेंद्र का। अब सुनवाते हैं यसुदास की मीठी सुर में ये गीत।

खूबसूरत अंदाज में आपने अभी यीशु दास से ये गीत सुना। अब आइए सुने मुकेश और आशा भोसले के आवाज़ों में ये दो गाना।

फिल्म फिर सुबह होगी का जुगल गीत पेश था और ये दो गाना राज कपूर और माला सिन्हा पर फिल्माया गया था। संगीत से सवारे थे खयाम, गीतकार था साहिर लुधियानवी। फूल देखा तो तेरी आंख का जादू याद आया, हवा चली तो वही लम्हा फिर ख्यालों में उतरा। गुलाब के चराग से महक उठा है जहाँ, देखा है तुम्हें जिधर जिधर, महके है फूल उधर उधर।

0: live vanuit de hoofdstad. Ozan Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो. स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl. info@ujala.nl. 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो.

आप सभी सुनने वालों को फिल्मी दुनिया में एक बार फिर एहतराम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अब यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम फिल्मी दुनिया शुरू करते हैं। तो आइए प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में ये गीत।

सुमन कल्याणपुर की आवाज में आपने अभी ये नगमा सुना, जिसके बारे में हम आज बातें आगे बढ़ाएंगे। पिछले प्रोग्राम में बतलाई थी कि तलत महमूद ने जब सुमन कल्याणपुर को एक कॉन्सर्ट में गाते हुए सुना तो उनकी आवाज से मुतासिर हुए, मगर इसके बाद क्या हुआ? तलत महमूद ने बिना वक्त जाया किए सुमन के बेमिसाल टैलेंट को पहचाना और उन्हें उस वक्त की सबसे बड़ी रिकॉर्ड कंपनी HiMFI से मिलवाया। शुरू में कंपनी के लोगों को लगा कि सुमन की आवाज में थोड़ा सा कच्चापन है, लेकिन तलत महमूद ने हार नहीं मानी। उन्हीं की कोशिशों से नेहतीन फिल्म फैतह में फिल्म दरवाज़ा के लिए सुमन का सबसे पहला डुएट रिकॉर्ड हुआ और ये गाना उन्होंने खुद तलत महमूद के साथ गाया था। उसके बोल है, एक दिल दो है तलबगार। जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में बतलाई थी, सुमन जी की सिर्फ एक अच्छी सिंगर ही नहीं थी, वो मुंबई के मशहूर सर जी जी स्कूल ऑफ आर्ट से पेंटिंग भी सीख रही थी, लेकिन मौसिकी अब उनकी किस्मत बन चुका था। साल नेहतीन अख्तम फैतह में उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उन्होंने मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन रामानंद कल्याणपुर से शादी कर ली। रामानंद साहेब सुमन के सबसे बड़े फैन और सपोर्टर थी, क्योंकि सुमन जी को कॉन्ट्रैक्ट और पैसे के मामले में होशियार नहीं थी, इसलिए उनके शौहर हर रिकॉर्डिंग पर अपने बीवी के साथ जाते थे और उनका करियर संभालते थे। आइए सुने फिल्म बदतमी से ये गीत।

आपने फिल्म बदतमीज में से ये गीत सुना। इसके गीतकार था हसरत जयपुरी, संगीत था शंकर जयकिशन। आप सुन रहे हैं सुमन कल्याणपुर जी की संगीत सफर। सुमन जी के संगीत सफर में एक ऐसी चीज थी जो उनके लिए वरदान मतलब ब्लेसिंग भी थी और श्राप भी। उनकी आवाज़ का सुर और टेक्सचर बिल्कुल महान गायिका लता मंगेशकर जैसा था। उस दौर में रेडियो सेलोन पर जब गाना चलते थे तो सिंगर्स के नाम नहीं बतलाए जाते थे, तो लोग अक्सर धोखा खा जाते थे और सुमन जी के गानों को लता का समझ लेते थे। यहाँ तक कि कई बार ग्रैमोफोन रिकॉर्ड्स पर गलती से लता मंगेशकर का नाम लिखा जाता था, लेकिन सुमन जी ने कभी इस बात का बुरा नहीं माना। उन्होंने हमेशा लता जी की इज्जत की और फिर आया नेहति शास्त्र का गोल्डन एरा, जब बॉलीवुड में एक बड़ा हंगामा हुआ। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहेब के दरमियान गाने की रॉयल्टी को लेकर अनबन हो गई और दोनों ने साथ गाने से इनकार कर दिया। उस वक्त हर म्यूजिक डायरेक्टर्स परेशान था कि रफ़ी साहेब की ऊंची और सुरीली आवाज़ के साथ कौन जोड़ी बनेगा। तब सबको याद आई वो थी सुमन कल्याणपुर। फिर क्या हुआ? जी हाँ, उन्होंने उस दौरान रफ़ी साहेब के साथ एक के बाद एक 100 से ज़्यादा खूबसूरत डुएट गाए। अब हम आपको उन्हीं गानों में से एक गाना सुनवाते हैं जो आज भी लोग इतने ही शौक से सुनते हैं और लुत्फ उठाते हैं। तो लीजिए आप भी सुमन जी और रफ़ी साहेब के ये डुएट को शौक से सुनें।

क्या बात है, इस गाना को सुनकर आपको झूमने का मन करता तो होगा, है ना? सुमन जी ने सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि मराठी, बंगाली, गुजराती समेत 10 से ज़्यादा जुबानों में गाना गाए हैं। वो हमेशा बॉलीवुड की चमक धमक और पार्टी से दूर रहती थी। उन्हें घर पर रहना, अपने बागीचे में काम करती थी और पेंटिंग करना पसंद था। सुमन जी और लता जी की कहानी संगीत की दुनिया की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। उन दोनों की आवाज़ इस कदर मिलती जुलती थी कि लोग अक्सर फर्क नहीं कर पाते थे। उनके दरमियान रिश्ता हमेशा इज्जत का रहा, लेकिन फिल्मी दुनिया की सियासत पॉलिटिक्स की वजह से दोनों के बीच एक अनदेखा मुकाबला ज़रूर था। उस दौर में लता जी का बॉलीवुड पर कब्जा मोनोपोली था। बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर्स सुमन जी को रिजर्व लता के तौर पर देखते थे। जब लता जी के पास वक्त नहीं होता था या उनकी डिमांड ज़्यादा होती थी तो सुमन जी को बुलाया जाता था। इस वजह से सुमन जी को वो मकबूलियत और वो क्रेडिट नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। सुमन कल्याणपुर की करियर का सबसे सुनहरा दौर तब शुरू हुआ जब लता मंगेशकर और रफ़ी के दरमियान रॉयल्टी के मसले पर अनबन हुआ और ये सुमन जी के लिए एक नियमित फ़ायदा साबित हुई। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ कई मशहूर डुएट्स गाए, जैसे कि आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। ये डुएट, जैसे मैंने कहा, आवाम इसे बहुत पसंद किया। पर आइए सुने इन दोनों की ये दो गाना मोहब्बत भरी अंदाज में।

मोहब्बत भरे अंदाज में आपने अभी सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी साहिब से ये दो गाना सुना। जब कुछ सालों बाद लता जी और रफ़ी साहिब से सुलह हो गई तो सुमन जी को मिलने वाले गाने फिर से कम हो गए। सुमन जी हमेशा लता जी को बहुत इज्जत करती थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में मजाक में कहा कि शायद हम दोनों खुदा से आवाज़ मांगने के लिए एक ही लाइन में खड़े थे और उन्होंने हमें आधी आधी आवाज़ दे दी। बस फ़र्क ये था

कि लता जी दुनिया में पहले आ गई। सो मैंने हमेशा कहा कि वो कभी लता मंगेशकर की नकल नहीं की, उनकी आवाज़ कुदरती तौर पर ऐसे ही थी। सुमन जी और लता जी ने अपने पूरे संगीत सफर में सिर्फ एक डुएट साथ गाया था जिसका नाम था कभी आज कभी कब। फिल्म थी चांद जो नेहती नेखना फैक्टर में रिलीज हुआ था। पर प्रोग्राम आगे बढ़ाने से पहले आइए सुने सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में ये गीत।

फिल्म मुनीम जी में से ये गीत लिया है। गाने वाले थी सुमन कल्याणपुर, जिसके बारे में हम बातें कर रही है। अब हम आपको एक दिलचस्प कहानी बतलाएंगे सुमन जी और लता जी के बारे में। ये सुमन कल्याणपुर की जिंदगी का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला और जरा दुख भरा किस्सा है। उस वक्त क्या हुआ था हम आपको विस्तार में बतलाएंगे। नई खंतीन त्वीय शस्त्र की भारत चीना की जंग के बाद मशहूर शायर कवि प्रदीप ने ये गाना शहीद जवानों के याद में लिखा था। उस दौर में म्यूजिक डायरेक्टर से रामचंद्र और लता मंगेशकर के दरमियान किसी बात पर अनबन थी, इसलिए से रामचंद्र ने सुमन कल्याणपुर को इस गाने के लिए चुना था। सुमन जी ने इस गाने की पूरी तैयारी की और बहुत दिनों तक रिहर्सल भी की थी। सुमन जी ने न्यू दिल्ली में होने वाले बड़े नेशनल इवेंट पर इस गाने को स्टेज पर लाइव गाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। फिर ऐसे क्या हुआ, क्यों हुआ, बातें आगे बढ़ाते हैं। ये इवेंट 27 जनवरी ने हितेंद्रिय शास्त्र को न्यू दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में था, जहां प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे और सुमन जी भी स्टेजों में मौजूद थी और पोडियम पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। लेकिन अचानक बैकस्टेज इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स शुरू हो गई। कुछ अहम लोगों का कहना था कि इतनी भरे और कौमी नेशनल लेवल के गाने को देश की नंबर वन गायिका को ही गाना चाहिए, तो आखिरी लम्हात लास्ट मिनट में लता मंगेशकर को राजी किया गाने को। सुमन जी पोडियम पर जाने वाली थी तब उसे पता चला कि अब वो ये गाना नहीं गाएंगी, बल्कि उनकी जगह लता मंगेशकर स्टेज पर जाकर ये गाना गाएंगी। पर लता मंगेशकर ने स्टेज पर जाकर ये गाना इस कदर दर्द और खूबसूरती से गाई थी, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गया। सुमन कल्याणपुर के लिए ये बहुत बड़ा इमोशन का झटका था, क्योंकि उनके हाथ से एक ऐसा मौका निकल गया जो उन्हें हमेशा के लिए अमर इमॉर्टल कर दिया। बातें आगे बढ़ाने से पहले हम आपको वो अमर गीत सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में।

जी हाँ, ये लता जी की आवाज़ है, लेकिन ये अमर गीत पहले सुमन कल्याणपुर को दिया गया था गाने के लिए। इस हादसे के बाद सुमन कल्याणपुर और से रामचंद्र के दरमियान प्रोफेशनली थोड़ी दूरी आ गई थी, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की इज्जत करना कभी नहीं छोड़ा। संगीतकार से रामचंद्र ने कहा कि वो समझते थे कि सुमन जी के साथ ना इंसाफी हुई थी, लेकिन इंडस्ट्री के दबाव के आगे वो भी मजबूर थे। फिर भी उन्होंने बाद में कुछ फिल्मों में साथ काम किए, जहां उस दौर के बड़े बड़े सिंगर्स सिर्फ बड़े और मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करते थे, वहीं सुमन जी का दिल बड़ा था। अगर कोई नया या गरीब प्रोड्यूसर उनके पास आता और कहते कि उनके पास पैसा कम है, तो सुमन जी बिना पैसा के भी गाना गा देती थी। सुमन जी को फिल्मी दुनिया की चमक धमक से दूर रहना पसंद था। उन्होंने बहुत कम इंटरव्यूज दिया और ना ही कभी किसी के बुरा कहा। जब उन्होंने गाना छोड़ा तो वो अपना पूरा वक्त अपनी बेटी अलका और बाकी परिवार के साथ बिताती थी। सुमन जी कहती थी कि सुकून बाजार में बिकने वाली चीज़ नहीं, ये आपके अंदर होना है। सुमन कल्याणपुर जी की 89 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गई। उनकी बेमिसाल आवाज़ हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगी।

अभी आपने फिल्मी दुनिया सुना, जिसमें हमने महान मारू शख्स सुमन कल्याणपुर जी के बारे में बयान किया। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं मन्ना देवी साहब से ये गीत।

दिल छू लेने वाला गीत पेश था, मनादे की आवाज और खुद उन्हीं की मौसिकी थी। कलाम था मधुकर राजस्थानी का। अब आइए सुने महेंद्र कपूर और आशा भोसले से ये दो गाना।

खूबसूरत अंदाज में पेश था ये दो गाना, रवि की सजाया संगीत था, बोल हसन कमाल का। अब आइए सुने गीता दत्त और हेमंत कुमार की आवाज़ों में ये दो गाना।

तूने मुझे चोरी से अपना बनाया और फिर हमें रोना सिखाया और हंसना सिखाया। क्या बात है। कामचोर फिल्म से आप सुने किशोर कुमार एंड लता जी से, और ये तो उजाला रेडियो है, आपको तो मालूम ही है ना। मोहम्मद रफी साहब हिस्सा लेंगे, मैथ्स लक्षणा पंडित जी।

भीगी भीगी वादियों में खो जाने को दिल कहता है सनम। मोहम्मद रफी साहब के साथ आप सुने सुलक्षणा पंडित की आवाज और फिल्म का नाम दिल ही दिल में उजाला रेडियो पर अन्य लता जी के साथ मुकेश जी।

और मेरा अंग अंग मस्काया, जाने ना नजर पहचाने जिगर। लता जी के साथ मुकेश जी को आप सुने फिल्म आह से उजाला रेडियो। इन्फॉर्मेशन के लिए उजाला.nl आप देखें।